गुजार की, वो जा रहा है कोई शब-ए-गम गुजार की। वीरा है मैं कदा खुम्मो सावर उदासी,

0: जी हाँ दोस्तों, तुसी फीफा वर्ल्ड कप फॉलो कर रहे हो कि नहीं जरूर दसना। पर अज दा जिहड़ा साडा प्रोग्राम है वह जिवें कि मैं शो दी स्टार्टिंग विच कहा सी, टैक्स स्पैशल है। टैक्स नूं लैके जे तुहाडे भी कोई सवाल होण तुसी पुछ सकदे हो, अज साडे नाल टैक्स माहर शो दे विच मौजूद होणगे। उस तों इलावा अज असीं तुहानूं दसांगे कि जुलाई 1 तों किहड़े किहड़े बदलाव आउण वाले, इन्हां बदलावां बारे तां इस ब्रेक दे उस पार पूरी खास पेशकारी लैके मैं हाज़र होण ही वाली हाँ। जिवें हुण वेला हो गया जी एक छोटा जिहा वखवा लैण दा, जाते जाने तुहानू ए भी दस दईए कि फीफा के जिन्हें भी मैच ने फीफा वर्ल्ड कप तुसी लाइव देख सकते हो SBS TV के उत्ते या फिर ऑनलाइन SBS ऑन डिमांड उत्ते। SBS ऑन डिमांड तुसी TV ते लगा सकते हो, फोन ते डाउनलोड भी कर सकते हो यदा ऐप ते। SBS ऑन डिमांड ते SBS पंजाबी दे प्रोग्राम भी मौजूद ने। मिलते हैं जी इस छोटे जे ब्रेक तो बाद।
1: There's a reason some things just taste better. At Sharma's Kitchen, we don't cut corners. We don't add what doesn't belong. Just real milk, traditional methods, and products made the way they should be. From paneer to yogurt, ghee to khoya, every batch is crafted with care, right here in Australia. You'll taste it, you'll trust it. Sharma's Kitchen. Yes, there is a difference.
2: विश्व पद्धर ते तेल दी घाट सानू सब नू प्रभावित कर रही है। सरकार कोल एक राष्ट्रीय तेल सुरक्षा योजना है अते असी इस वेले दूजे पद्धर ते हाँ। अपनी कार दी घट अते वधेरे कुशलता नाल वरतों ट्रक ड्राइवरां, किसानां अते जरूरी सेवावां लई तेल बचाउण विच मदद करदी है। हर छोटी कोशिश मददगार है। fuelplan.gov.au/punjabi ते जाओ। आस्ट्रेलिया सरकार, कैनबरा वल्लों जारी।
3: दुनिया भर दीआं कहानियां संभालियां होईआं ने SBS वर्ल्ड मूवीज़ उत्ते। 24 घंटे सत्तो दिन मुफ्त देखो चैनल 32 ते जां SBS ऑन डिमांड ते। आदिवासी अते टॉरस स्टेट आईलैंडर लोकां दे दरपेश आउण वाले सभ्याचारक, राजनीतिक अते समाजिक मुद्दिआं बारे ताज़ा परिपेख देखो द पॉइंट NITV उत्ते जां किसे भी समें SBS ऑन डिमांड ते।
4: SBS Audio
5: अपनी वेवलेंथ नाल मेल खांदियां तरंगा सुनने लई प्ले बटन दबाओ।
6: SBS Chill,
7: SBS Pop Asia, non-stop Asian pop.
8: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
9: SBS Hindi उपलब्ध करवाता है।
10: Far from the partisan politics.
5: नाल ही सख्त वट भाषावां विच खबरां भी। तुहाडे मूड नाल मेल खांदा संगीत अते मनमोहक पॉडकास्ट भी जो तुहाडी उडीक कर रहे ने। SBS Audio ऐप डाउनलोड करो जां
4: sbs.com.au/audio।
0: ब्रेक तो बाद एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा तुहाडे अपने SBS पंजाबी प्रोग्राम विच जिन्हों तुसी सुन रहे हो मेरे शायना कालरा दे नाल। ते अज दा साडा प्रोग्राम है जी टैक्स स्पैशल। टैक्स बारे करांगे गल्लां बातां, पर पहलां सुनदे हां जी चक्कवा जिहा पंजाबी गाणा।
11: Current, where are you at?
12: उत्ते देख

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Hindi on mobile, online and on radio.
1: आप सुन रहे हैं SBS Hindi mobile, online और radio पर.
2: शुक्रवार 26 जून 2026 का दिन और SBS के हिंदी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और आपको अनीता बरार का नमस्कार. सबसे पहले कि आज हम जिस भूमि से इस कार्यक्रम का प्रसारण कर रहे हैं उसके पारंपरिक उत्तराधिकारियों को स्वीकार करते हैं. SBS हिंदी कुलीन राष्ट्र के वारंजरी लोगों, उनके अतीत और वर्तमान के बुजुर्गों के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करता है. हम उन सभी मूल निवासियों और टॉरस स्ट्रेट आइलैंड के पारंपरिक उत्तराधिकारियों का भी सम्मान करते हैं जिनकी भूमि से आप ये कार्यक्रम सुन रहे हैं. श्रोताओं, आपके साथ एक पूरे घंटे का साथ है और कोशिश रहेगी कि आपके लिए वो सब हो जिसकी आपको उम्मीद रहती है हमसे और आप हमारे साथ पूरे समय बने भी रहें, अपने संदेश भी भेजते रहें, जो भी अच्छा बुरा लगे हमें बताते भी रहें. और श्रोताओं, बताती चलूं कि कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं एशियो की चेतावनी की. भारत से रिपोर्ट के अलावा बात करेंगे भारत के एक शहर के बारे में जो अक्सर हमें दिखता है फिल्मों में, गानों में. वैसे भारत में कौन सी ऐसी लोकप्रिय जगह हैं जो बॉलीवुड के साथ साथ हॉलीवुड में भी दिख जाती हैं, जिन्हें आप अक्सर फिल्मों में देखते हैं. बस आप मुझे लिख भेजिएगा 04397997667 पर. और अभी पहले न्यूज़ फ्लैश. नमस्कार, शुक्रवार 26 जून के लिए यह है न्यूज फ्लैश और मैं हूं अनीता बरार. पैराग्वे के खिलाफ मैच के बाद सोकुरुज ने वर्ल्ड कप नॉकआउट राउंड में जगह बनाने का अपना लक्ष्य हासिल कर लिया. सैन फ्रांसिस्को बे एरिया स्टेडियम में किसी भी टीम ने एक भी गोल नहीं किया. ये तीसरी बार है जब ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप के नॉकआउट स्टेज में पहुंचा है और पहली बार ऐसा लगातार टूर्नामेंट में हुआ है. सोकुरुज ग्रुप डी में दूसरे स्थान पर हैं. देश भर में लाइव साइट्स फैंस से भरी हुई थीं. वेनेजुएला में सैकड़ों लोग मलबे में फंसे हुए हैं. राजधानी काराकस और उसके आसपास के इलाकों में आए दो जोरदार भूकंपों से तबाही मच गई है. अधिकारियों का कहना है कि कम 188 लोग मारे गए हैं और ये संख्या बढ़ने की उम्मीद है. लगभग 1500 लोग घायल हुए हैं और हजारों लोग लापता बताए गए हैं. प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज़ी का कहना है कि उन्हें वेनेजुएला में आए भूकंप के बारे में जानकारी दी गई है. उन्होंने एबीसी को बताया कि प्रभावित लोगों में ऑस्ट्रेलियाई भी शामिल हो सकते हैं और सरकार इस संभावना के लिए तैयारी कर रही है. पार्लियामेंट्री जांच में पता चला है कि पिछले 10 सालों में आदिवासी

0: एफआईआर दर्ज होने के बाद इन सभी को हिरासत में लिया गया था, जिसके बाद अब इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव, अनुकल्प मिश्र, अविनाश शुक्ला, करुणेश पांडे, लवकुश मिश्र, रमाशंकर मिश्र, सुभाष श्रीवास्तव और मनीष यादव पर नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। इन सभी पर चोरी, आपराधिक विश्वासघात और आपराधिक षड्यंत्र समेत विभिन्न आरोपों में भारतीय न्याय संहिता के तहत मामला दर्ज किया गया है। अयोध्या के राम मंदिर में कथित दान और चढ़ावा चोरी का मामला सामने आने के बाद ट्रस्ट ने विशेष जांच का अनुरोध किया था, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रकरण की जांच के लिए एसआईटी का गठन हुआ था। अन्य समाचारों और समुदाय के समाचारों के लिए आप हमारी फेसबुक और हमारे वेब पेज sbs.com.au/hindi से जुड़े रहें। न्यूज फ्लैश समाप्त हुआ। और श्रोताओं, न्यूज फ्लैश के बाद बात फुटबॉल वर्ल्ड कप की, यानी आज के खेल का लेखा जोखा प्रस्तुत कर रहे हैं नबील हसन।
1: सोकरूज ग्रुप डी में नॉकआउट स्टेज में पहुंच गए हैं, जबकि इक्वेडोर ने ग्रुप ई में जर्मनी को बेहद करीबी मुकाबले में हराकर राउंड ऑफ 32 में जगह बना ली है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के 15वें दिन के डेली अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं नबील हसन। सोकरूज ने पैराग्वे के खिलाफ 0-0 के ड्रॉ के बाद नॉकआउट स्टेज में क्वालिफाई कर लिया है। ऑस्ट्रेलिया के कोच टोनी पोपोविच ने स्टार्टिंग 11 में 6 बदलाव किए और पहले हाफ में ऑस्ट्रेलिया ने काफी आगे बढ़कर खेलते हुए कई प्रॉमिसिंग मौके बनाए। पैराग्वे की मेन स्ट्रेटेजी ऑस्ट्रेलियन अटैक को रोकना था और उनके डिफेंसिव सेटअप ने पहले 45 मिनट में सोकरूज को काफी फ्रस्ट्रेट किया। दूसरे हाफ में पैराग्वे ने ज्यादा अटैकिंग अप्रोच अपनाई, लेकिन अंत में कोई भी टीम गोल नहीं कर सकी, जिससे ये रिजल्ट ऑस्ट्रेलिया के लिए फायदेमंद रहा। मिडफील्डर जैक्सन इरविन ने अपनी टीम के प्रदर्शन पर खुशी जताई।
2: Amazing, two World Cups in a row, two second places. It shows the kind of steps we've made, but this was the kind of expectation for us. Now we've got to go and do something, no Australian team's done before and win a knockout game. I think the first hour, we were really good. Much more positive in the game than the last couple as well, which just gives the boys a good feeling, really good. Like, listen, at the end of the day, we knew a point was enough. So when the whistle came, we're all happy.
1: Australia अब ग्रुप जी के रनर अप से भिड़ेगा, जिसमें बेल्जियम, इजिप्ट, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान और न्यूजीलैंड शामिल हैं। दूसरे ग्रुप मैच में तुर्की ने अमेरिका को 3-2 से हराकर अपने टूर्नामेंट का शानदार अंत किया। दोनों टीमों को मैच से पहले ही अपना रिजल्ट पता था। अमेरिका ने टॉप स्पॉट सिक्योर कर लिया था, जबकि तुर्की पहले ही एलिमिनेट हो चुका था। ग्रुप ई में इक्वेडोर ने स्कोर में पीछे रहने के बाद 4-time वर्ल्ड चैंपियंस जर्मनी को 2-1 से हराया और राउंड ऑफ 32 में अपनी जगह पक्की कर ली। जर्मनी ने अपने पहले दो मैच जीत कर पहले ही ग्रुप में टॉप स्थान हासिल कर लिया था। कोट डिवोर ने कुरासाओ को 2-0 से हराकर दूसरे स्थान पर रहते हुए क्वालिफिकेशन हासिल की। ग्रुप एफ में स्वीडन और जापान दूसरे स्थान के लिए मुकाबला कर रहे थे और 1-1 के ड्रॉ ने जापान को ये जगह दिला दी। स्वीडन ने बेस्ट थर्ड प्लेस टीम्स में से एक के रूप में आगे बढ़ने का मौका हासिल किया, जबकि जापान अब राउंड ऑफ 32 में ब्राजील का सामना करेगा। इसी बीच नेदरलैंड्स ने ट्यूनिशिया को 3-1 से हराकर ग्रुप में आराम से पहला स्थान हासिल कर लिया और नॉकआउट स्टेज में मोरक्को के खिलाफ मुकाबला तय किया। कल डे 16 पर 6 मैचेस खेले जाएंगे। ग्रुप आई में नॉर्वे का मुकाबला फ्रांस से होगा, जबकि सेनेगल का सामना इराक से होगा। ग्रुप एच में यूरुग्वे स्पेन से बढ़ेगा और कैबो वर्डे का मुकाबला सऊदी अरेबिया से होगा। ग्रुप जी में न्यूजीलैंड का सामना बेल्जियम से होगा, जबकि इजिप्ट की टक्कर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान से होगी। आप सुन रहे थे फीफा वर्ल्ड कप 2026 के 15वें दिन का वर्ल्ड कप डेली अपडेट। मैं हूं नबील हसन। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के हर पल को SBS और SBS ऑन डिमांड पर लाइव और फ्री देखें।
0: कार्यक्रम के साथ आप जुड़े रहें, अपने संदेश भी भेजते रहें 04397997667 पर, और आपसे मिलती हूँ इस अंतराल के बाद।

0: SBS स्पोर्ट खेल प्रेमियों के लिए नंबर एक जगह साइकिलिंग मोटर स्पोर्ट विश्व एथलेटिक्स और भी बहुत कुछ sbs.com.au/sport पर जाएं।
1: NITV पर जानें उन मुद्दों के बारे में जो एबोरिजिनल और टॉरस स्ट्रेट आइलैंडर लोगों के लिए मायने रखते हैं। देखें NITV चैनल 34 और SBS ऑन डिमांड पर। आपके लिए लेकर आए हैं पुरस्कार विजेता नाटक, अंतर्राष्ट्रीय खेल और वृत्त चित्रों की दुनिया। SBS विविधताओं का एक संसार। देखिए SBS अपनी टीवी पर चैनल 30 और SBS वाइसलैंड चैनल 31 पर। SBS वर्ल्ड न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज और उभरती हुई कहानियाँ जो आपके लिए मायने रखती हैं, ऑस्ट्रेलिया और दुनिया भर से। देखिए SBS वर्ल्ड न्यूज हर रात 6:30 बजे SBS और SBS ऑन डिमांड पर।
2: SBS आपके तैयार होते ही तैयार है। Alexa, Google Home या Apple स्मार्ट स्पीकर के साथ जुड़े रहना आसान है। सुनिए ताजा खबरें, विचार और कहानियां SBS हिंदी से जब चाहें। बस कहें प्ले SBS हिंदी पॉडकास्ट। SBS ऑडियो संगीत, रेडियो और पॉडकास्ट आपकी लय से मेल खाते हुए।
3: SBS ऑडियो
0: अपने मनपसंद ऑडियो को सुनने के लिए प्ले दबाएं।
4: यही ज्यादा लिया। चुनबल हाल में
5: SBS chill.
6: SBS pop Asia, non-stop Asian pop.
7: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
0: SBS हिंदी उपलब्ध करवाता है।
8: Far from the partisan politics.
0: 60 से अधिक भाषाओं में समाचार के साथ आपके मूड से मेल खाने वाला संगीत और मनोरम पॉडकास्ट आपका इंतजार कर रहे हैं। SBS ऑडियो ऐप डाउनलोड करें या फिर
3: sbs.com.au/audio।
9: SBS पर आप सुन रहे हैं हिंदी कार्यक्रम और आपके साथ हूं मैं अनीता बरार। श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत में मैं पूछ रही थी कि भारत में कौन सी ऐसी लोकप्रिय जगह हैं जो बॉलीवुड के साथ साथ हॉलीवुड में भी लोकप्रिय हैं, पॉपुलर हैं और जिन्हें आप अक्सर फिल्मों में देखते हैं, गानों में देखते हैं। तो बस आप उसके बारे में सोचिए और मुझे लिख भेजिएगा। और अभी बात करते हैं एशियो की तरफ से आई चेतावनी और उन चिंताओं की। एशियो ने बताया है कि दिसंबर में बुंडई में हुई मास शूटिंग के बाद से 14 टेरर प्लॉट्स को नाकाम किया गया है और अभी भी टेरर का स्तर संभावित है। लेकिन सर्विस अपने वार्निंग सिस्टम का रिव्यू करेगी क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के स्पाई चीफ ने चेतावनी दी है कि अभी भी सिस्टम जनता के सामने आने वाले खतरे को कम करके बता रहा है। SBS हिंदी पर मैं हूं अनीता बरार।
10: When we see autocratic regimes seek to silence dissidents and perceived enemies, we are shocked, but we shouldn't be surprised. When hackers exploit known vulnerabilities to compromise, we are shocked, but we certainly shouldn't be surprised. When anti-Semitism grows after being tolerated and normalized, we are shocked, but we should not be surprised.
9: एजियो के डायरेक्टर जनरल माइक बर्जेस ने अपने सालाना भाषण में ये बात कही है जो एजेंसी के अभी के आतंकी खतरे यानी टेरर थ्रेट के असेसमेंट का हिस्सा हैं। भाषण से पता चला है कि एजियो ने दिसंबर में बुंडई में हुई मास शूटिंग के बाद से 14 टेरर प्लॉट्स को नाकाम किया है। नेशनल स्पाई एजेंसी के बॉस का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया का अभी का खतरा संभावित है, जिसका अर्थ है कि अगले 12 महीनों में ऑनशोर अटैक या अटैक प्लानिंग का 50% से अधिक मौका है। लेकिन उनका कहना है कि इससे पूरी कहानी पता नहीं चलती।
10: नेक्स्ट लेवल ऑन द स्केल इज एक्सपेक्टेड, व्हिच अप्लाइज व्हेन वी हैव इंटेलिजेंस अबाउट अ स्पेसिफिक अटैक। वी डू नॉट, but we do know the environment is degrading and acts of politically motivated violence are becoming more likely than probable suggests.
9: जिस सिक्योरिटी माहौल की वो बात कर रहे हैं उसमें ऑस्ट्रेलियाई लोगों के ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन का खतरा, विदेशी एंटिटीज का दखल शामिल है। एजियो ने ऑस्ट्रेलिया से मजबूत लिंक वाले दो लोगों की पहचान की है जिन पर ईरान की तरफ से यहूदी टारगेट पर हमला करने का आरोप है। माइक बर्जेस का कहना है कि ईरान में रहने वाले एक ऑस्ट्रेलियाई नागरिक ने 2024 में बोंडाई में एक बिजनेस पर फायर बॉम्बिंग की साजिश रची थी। और इराक में रहने वाला एक पुराना ऑस्ट्रेलियाई निवासी मेलबर्न के एडास इसराइल सिनेगॉग पर हमले के पीछे था। बर्जेस का कहना है कि दोनों ही ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स से जुड़े थे और एजियो जानता है कि वे कौन हैं, लेकिन उनका नाम नहीं बता सकता क्योंकि जांच जारी है। इंटेलिजेंस रिस्क के सीईओ नील फर्गस, जो इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड टेररिज्म के विशेषज्ञ हैं, उन्होंने चैनल 9 के टुडे शो में बताया कि ये हमले विदेशों में हुई ऐसी ही घटनाओं के बाद हुए हैं।
3: If there was a trend, it would be that they're using proxies or criminals to carry out arson attacks against the Jewish Ambulance Service in Golders Green, against the Bank of America in Paris. There's no mass casualty attacks, thank God, involved in that.
5: Yeah.
3: But I think Burgess is correct to say we've got to be absolutely on our guard at the moment.
9: एजियो की चेतावनी के साथ कि राजनीतिक रूप से मोटिवेटेड हिंसा के कामों की संभावना बढ़ रही है, गृह मामलों के मंत्री टोनी बर्क ने एबीसी रेडियो को बताया कि अभी एक दशक पुराने टेरर थ्रेट वार्निंग सिस्टम का रिव्यू किया जा रहा है।
11: There is a review that's happening on that. That's right. And different countries, particularly our Five Eyes partners, everyone does it a slightly different way, and we're looking at that. The thing that matters is making sure that the Australian people, but also all the law enforcement agencies, get the best possible information.
9: Liberal Senator Jonathan Dunham का कहना है कि अगर सिस्टम काम नहीं कर रहा तो बदलाव प्राथमिकता होनी चाहिए.
12: All of these things combined with all of the events that have occurred over the last 12 months, including, of course, Bondi, are extreme concerns for us as a country. If the legal regimes need revisiting, if the framework around how we deal with terror-related matters need revisiting, then let's do that as a matter of urgency.
9: इस बीच जब ऑस्ट्रेलिया की स्पाई एजेंसी अपनी टेरर थ्रेट गाइडेंस जारी कर रही थी, तो तथाकथित इस्लामिक स्टेट ग्रुप, जो कि एक डेजिग्नेटेड टेररिस्ट नेटवर्क है, उसके एक सदस्य के पार्टनर को देश में फिर से प्रवेश दे दिया गया। सीरिया में रह रही महिला पर पहले एक टेम्परेरी एक्सक्लूजन ऑर्डर था, जिसे हटा दिया गया ताकि वो घर आ सके। बर्क ने एबीसी रेडियो को बताया है कि महिला के लौटने पर उस पर बहुत उच्च स्तर की निगरानी, यानी हाई लेवल का सर्विलेंस होगा।
11: But we received the final advice yesterday that we can no longer have an exclusion condition any longer for her. We've checked with our agencies, they are ready. So that permit gets issued. What it then means is the conditions that do apply to her are everything that is possible. So, for example, she will have to report, and we will have to know where she lives, where she works, where she studies.
9: National Party ke leader Matt Canavan ka kehna hai ki sarkar desh ki raksha aur suraksha ke paksh mein khadi nahi hai.
13: We feel the government should have done more to keep people like this who have associated with terrorist organisations, the world's worst terrorist organisations in the world, they should have been kept out of our country.
9: कल हुई ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट कॉन्फ्रेंस का विषय भी ऑस्ट्रेलियाई जमीन के बाहर से सिक्योरिटी के खतरे थे। इसका विषय था सिक्योरिंग द रीजन फॉर अनसर्टेनिटी। ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी में स्ट्रेटेजिक एंड डिफेंस स्टडीज सेंटर के प्रोफेसर पीटर डीन ने क्षेत्रीय सुरक्षा खतरे का सामना करने के लिए एशियो की तैयारी की बात दोहराई है। उनका कहना है कि एक देश के तौर पर आत्मनिर्भरता ही कुंजी है। उन्होंने 2026 की राष्ट्रीय रक्षा रणनीति यानी नेशनल डिफेंस स्ट्रेटजी का जिक्र किया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया से इंटेलिजेंस और लॉजिस्टिक्स के लिए यूएस पर निर्भरता खत्म करने की बात कही गई है।
14: That is dead. So what is self-reliance in the face of a major war potential against a major power threat to look like? And as Ian Dias tells us, it's starting to look like more industrial self-reliance. Yep. It's starting to look like more national resilience and social cohesion. It's starting to look like civil preparedness. It's starting to look like all of these things.
9: जब विशेषज्ञों ने देश की आत्मनिर्भरता बढ़ाने की बात की, तो रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने ऑकस के भविष्य पर अपनी राय दी। यह अमेरिका और ब्रिटेन के साथ एक त्रिपक्षीय रक्षा समझौता है, जिस पर 2021 में हस्ताक्षर किए गए थे। मास का कहना है कि वो इस डील के प्रैक्टिकल होने और भविष्य को लेकर हो रही आलोचना को स्वीकार करते हैं, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्रियों और ASPI यानी ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट के पहले प्रमुख की आलोचना भी शामिल है। लेकिन उनका कहना है कि ये डील ऑस्ट्रेलिया की सुरक्षा के लिए बहुत आवश्यक है।
15: In regards to all three countries, we have now seen
5: changes of government in terms of political persuasion in all three, whilst the commitment to AUKUS has been maintained in all three.
9: Lowy Institute ke ek poll ke anusar is deal ko janta ka bhi support hai. लोवी इंस्टीट्यूट के सर्वे में ये भी पाया गया कि इतिहास में पहली बार अधिकतर ऑस्ट्रेलियाई असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। लेकिन चार्ल्स लियोन जोन्स समेत रिसर्चर्स का कहना है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी से काम करने पर भरोसा कम होने के बावजूद लगभग 3/4 जवाब देने वाले ऑस्ट्रेलिया का US के साथ अलायंस का सपोर्ट करते हैं.
15: And what that shows is that Australians remain pragmatic about the global environment we face and understand that world events impact here at home.
9: SBS News के लिए कैमली बियांची और SBS हिंदी के लिए इस रिपोर्ट को प्रस्तुत किया अनीता बरार ने. तो श्रोताओं, आप सुन रहे थे एक रिपोर्ट कि एशियो यानी ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन की एक चेतावनी और चिंताओं के बारे में. और जैसा कि मैं पहले बात कर रही थी कार्यक्रम में, आज हम आगे बात करेंगे भारत के एक जाने माने शहर के बारे में जो अक्सर हमें दिखाता है बॉलीवुड, और कभी कभी वो हॉलीवुड में भी दिख जाता है. वैसे भारत की कई ऐसी जगहें हैं जो फिल्मों की लोकेशन के लिए लोकप्रिय हैं. कुछ जगहें आपको याद आ ही रही होंगी, तो बस क्यों ना आप मुझे लिख भेजें. वैसे हमारे श्रोता राजेंद्र वोहरा जी ने याद किया है मुंबई को, और भी कई जगहें हैं, बस याद कीजिए और लिख भेजिए 0439-799-767 पर. और मैं मिलती हूँ आपसे इस अंतराल के बाद.
1: जानिए SBS के टीवी और रेडियो चैनलों पर क्या चल रहा है और क्या आने वाला है. sbs.com.au/guide पर जाएं.
16: Want to enjoy the sights of South Asia whilst you listen to the sounds of SBS South Asian? We've got you. Watch SBS South Asian on SBS On Demand. It's your favorite radio channel in your language with great music from all over South Asia. But now, it's accompanied by stunning drone shots. Think mountain peaks, city streets, beaches and bazaars. It's radio with a view. SBS South Asian, stream it on SBS On Demand.
17: SBS Chill. Par duniya bhar ke sangeet ke saath aaram kare. SBS Chill sunne ke liye SBS Audio app par jaein. Insight, SBS का पुरस्कृत करंट अफेयर्स. ये उन विषयों पर चर्चा करने से नहीं डरता जिन पर अन्य लोग बात नहीं करना चाहेंगे. हर मंगलवार 8:30 SBS और ऑन डिमांड पर.
1: SBS ऑन डिमांड पर सैकड़ों टीवी शो और फिल्में मुफ्त में उपलब्ध हैं. कहानियों की इस दुनिया को अपने फोन, स्मार्ट टीवी, टैबलेट या लैपटॉप पर देखें. आज ही SBS ऑन डिमांड ऐप डाउनलोड करें या वेबसाइट पर जाएं. अंतर्राष्ट्रीय वृत्त चित्रों से लेकर क्लासिकल कल्ट फिल्मों तक, विश्व स्तरीय नाटक से लेकर गुदगुदाने वाली हास्य फिल्मों तक, देखिए SBS वाइसलैंड चैनल 31 पर. NITV पर जाने उन मुद्दों के बारे में जो एबोरिजिनल और टॉरस स्ट्रेट आइलैंडर लोगों के लिए मायने रखते हैं. देखें NITV चैनल 34 और SBS ऑन डिमांड पर.
18: क्या आपको SBS हिंदी सुनना अच्छा लगता है? अपनी बातचीत हमसे जारी रखिए हमारे फेसबुक पेज पर. हमारा पेज लाइक करें. SBS हिंदी फेसबुक पर भी है. sbs.com.au/hindi को अपना ऑनलाइन होम बनाइए. ताजा तरीन खबरें अपनी भाषा में पाइए. sbs.com.au/hindi पर जाएं.
9: SBS पर आप सुन रहे हैं हिंदी कार्यक्रम और आपके साथ हूँ मैं अनीता बरार. श्रोताओं, जैसा कि मैं बात कर ही रही हूँ कि आज भारत के एक ऐसे शहर की बात भी करती चलूँगी जो बॉलीवुड फिल्मों में दिखता है या कभी कभी वहाँ पर गाने फिल्माए जाते हैं. और उसी में आपसे भी पूछ रही हूँ कि कुछ खास जगह भारत की ऐसी जो अक्सर फिल्मों में दिखाई देती हैं या कभी आपने देखी हो और आपको बहुत पसंद आ गई हो, तो कोई भी जगह हो सकती है। चलिए, वो तो आप याद करेंगे ही और मुझे आप अपने संदेश भी भेजेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। इससे पहले एक गाना सुनते चलते हैं। अब इस गाने को सुनते चलते हैं और मुझे लग रहा है कि आपको ये फिल्म भी याद होगी, इसके कलाकार भी याद ही होंगे, और सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात ये कि इसकी लोकेशन भी आपको याद ही होगी। तो बस आप याद कीजिए कि ये कहाँ पर है।

0: तो श्रोताओं, याद आया कि ये कौन सी फिल्म है और कलाकार कौन है और इसको कहाँ पर फिल्माया गया, यानी ये गाना अगर शहर नहीं तो भारत के कौन से राज्य में इस गाने को फिल्माया गया था। तो मुझे आप इसके बारे में लिखिएगा। और आइए चलते हैं भारत के ही ओर, हमारे संवाददाता विश्व रत्न के साथ भारत की ये रिपोर्ट।
1: अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे में कथित गड़बड़ी और चोरी के मामले में FIR दर्ज कर ली गई है। राम जन्मभूमि ट्रस्ट की ओर से पुलिस में दर्ज शिकायत में 8 लोगों को नामजद किया गया है। हालांकि चंपत राय जैसे बड़े नामों का उल्लेख इस FIR में नहीं है। ट्रस्ट के महासचिव होने के चलते चंपत राय की भूमिका को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। विपक्ष ने पूरे मामले पर लीपापोती का आरोप लगाया है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की बात दोहराई है। इस मामले में समाजवादी पार्टी की बयानबाजी की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा,
2: प्रभु रामलला हम सबके आस्था के केंद्र हैं और आस्था के केंद्र पर लगातार इस प्रकार की बयानबाजी करना, जहां आज तक आप दर्शन करने की हिमाकत भी नहीं कर पाए हो, क्योंकि आपको पता है जब भी आप दर्शन करने जाएंगे अयोध्या धाम में, आपका जो तुष्टिकरण का फार्मूला है फेल हो जाएगा, जो इसकी जनता अच्छी तरह सब समझती है। जो भी दोषी होगा उसमें बचेगा नहीं, प्रभु रामलला की नजरों से कोई नहीं बचेगा। मैं यही कहना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी को अपनी अंतरात्मा पर एक बार जरूर सुनना चाहिए, समझना चाहिए कि देश जनता क्या चाहती है।
1: आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने इस गड़बड़ी की जांच कर रही SIT को कुछ सबूत दिए हैं। उन्होंने इसकी जानकारी मीडिया को देते हुए कहा,
3: SIT को मैंने जो कागजात सौंपे हैं, 11 दस्तावेज के सेट सौंपे हैं, जिसमें 2 दस्तावेज एक साथ जुड़े हुए हैं, उससे संबंधित कागजात दिए हैं और जांच करने के लिए कहा है। मुझे लगता है जिस तरह से उन्होंने आश्वस्त किया, इस पर कार्रवाई करेंगे।
1: भारतीय जनता पार्टी ने 1975 में लागू आपातकाल को याद करके कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला है। गुरुवार को आपातकाल की 91वीं वर्षगांठ पर इसे संविधान हत्या दिवस के रूप में भाजपा ने मनाया। केंद्रीय मंत्री JP नड्डा ने आपातकाल को याद रखने का कारण बताते हुए कहा,
4: आज हम इसलिए याद करते हैं कि भारत का प्रजातंत्र जिस मजबूती के साथ उस समय प्रजातंत्र का गला घोटने वाले को जवाब दिया था, यह प्रजातंत्र भारत का हमेशा हमेशा मजबूत रहे और उसको कोई आंच ना आए, इसकी हम प्रतिज्ञा भी करते हैं। और इसका यह उदाहरण है आने वाली सरकारों के लिए, आने वाली जमहूरियत के लिए, कि इस तरीके का दुस्साहस करने वालों का हश्र क्या होता है।
1: भाजपा के वरिष्ठ नेता और सांसद रविशंकर प्रसाद ने आपातकाल को लोकतंत्र पर हमला बताते हुए कहा,
5: संसद के साथ जो बदसलूकी की गई, 5 साल का 6 साल विपक्ष जेल में मनमानी तरीके से कानून बन रहा है और संविधान को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। What I am saying, all the shades of democracy were murdered during emergency. सारे संवैधानिक संस्थाओं की हत्या की गई उस समय।
1: तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की कुर्सी बचाने के लिए आपातकाल लागू किया गया था, ऐसा रविशंकर प्रसाद का कहना है।
5: इंदिरा गांधी का इलेक्शन रायबरेली से सेट असाइड हो गया इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा। इंदिरा जी सुप्रीम कोर्ट आई उसके खिलाफ, उनको स्टे नहीं मिला। यही कहा गया, आप सदन में आ सकती हैं लेकिन बोलेंगी नहीं। ये जब वाकया हुआ तब इंदिरा गांधी को बचाने की कोशिश हुई और उसी बचाने की कोशिश में इमरजेंसी का दुरुपयोग किया गया। तो पहली बात ये ध्यान रखिए, विपक्ष का विरोध, देश को तोड़ने की बात, ये सब बिल्कुल बेबुनियाद है। इमरजेंसी सिर्फ और सिर्फ लगाई गई इंदिरा गांधी की कुर्सी बचाने के लिए।
1: आपातकाल को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया जा रहा है। NCERT की किताब में एक अध्याय इसी पर जोड़ा गया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसे सही कदम बताया है।
6: ये तो सही बात ना, NCERT ने सही किया है। इमरजेंसी जैसे काले कारनामे को देश को भविष्य के पीढ़ी जाने पढ़े समझे ऐसे दोबारा स्थिति ना आए, इसलिए एनसीईआरटी ने उसको विषय में लाए।
1: कांग्रेस पार्टी ने भाजपा के इस रवैये की आलोचना की है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहते हैं,
7: ये मैंने देखा है कि जब भी सरकार भाजपा की होती है किसी राज्य में या देश में, तो पहला काम वो क्या करते हैं, किताब इतिहास साहित्य को अपने तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। वो भाजपा की सरकार का अपना एक ध्येय हो सकता है, लेकिन मैं इतना मानता हूँ कि हमें आगे देखना पड़ेगा। और आज जो चुनौती लोकतंत्र को है, आज़ाद भारत के इतिहास में आज तक नहीं मिली, जिस प्रकार दुरुपयोग कर आवाज को दबाया जा रहा है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे मीडिया हो, चाहे जुडिशरी हो, ब्यूरोक्रेसी हो, निर्वाचन आयोग, कोई संस्था हो, जिस तरह का दुरुपयोग कर अपने हितों को साधने की कोशिश ये सरकार कर रही है, आज से पहले कभी नहीं हुआ।
1: कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने आज के दौर को आपातकाल बताया।
8: जी, हमारी सरकार 2014 से लेकर और 2029 तक जो इमरजेंसी हुई है, देखते हैं हम भी कितना ये बचेंगे फिर उससे।
1: कांग्रेस पार्टी परीक्षाओं की गड़बड़ी और छात्रों की समस्या को लेकर आंदोलन छेड़ने जा रही है। गुरुवार को 28 शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नीट परीक्षा और छात्रों की समस्या को लेकर सरकार को घेरा गया। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार का कहना है कि पार्टी छात्रों की आवाज को सड़क से लेकर संसद तक उठाएगी।
9: कांग्रेस पार्टी ने इस देश भर के विद्यार्थियों की आवाज को सुनने के और वो जो लगातार सड़कों पर हैं आंदोलन कर रहे हैं, उस आवाज को सड़क से लेकर के संसद तक शिक्षा व्यवस्था को बदलने की जो यह मुहिम, उसको बुलंदी से आगे बढ़ाने का फैसला लिया है। और इसके तहत हम देश भर में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उसके बाद एक लीफलेट जो है, एक पैम्फलेट जो है हमने तैयार किया है, इसको हम मैक्सिमम विद्यार्थियों के बीच ले जाने का काम करेंगे।
1: देश की शिक्षा व्यवस्था और युवाओं से जुड़े मुद्दे को लेकर काकरोच जनता पार्टी भी अपनी आवाज उठा रही है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के रूप में शुरू हुई काकरोच जनता पार्टी अब जमीन पर भी सक्रिय हो गई है। पार्टी लगातार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रही है। दिल्ली के जंतर मंतर में इस संगठन का प्रदर्शन पिछले कुछ दिनों से लगातार जारी है। देश के जाने माने पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक इस प्रदर्शन को अपना समर्थन दे रहे हैं। सोनम ने 28 तारीख से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करने की घोषणा की है। भारत से आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं विश्व रत्न SBS रेडियो की हिंदी सेवा के लिए।
0: तो श्रोताओं, आप सुन रहे थे भारत से ये रिपोर्ट। और इस बीच हमारी श्रोता रमा जी ने कुछ जगहों के नाम लिखे हैं, जैसे उदयपुर, जयपुर, जैसलमेर, कोलकाता, यानी ये जगह जो अक्सर हमारी फिल्मों में दिखाई देती हैं और अच्छी लगती हैं। इसी तरह से ब्रिस्बेन से हमारे साथ जुड़े हैं कैलाश जी। उन्होंने याद किया है कि कश्मीर जो है ना, उसका नज़ारा देखने में उन्हें बहुत अच्छा लगता है। और हमारे श्रोता कैनबरा से थीरू जी ने बिल्कुल सही जवाब लिख के भेजा है कि जो गाना अभी इस रिपोर्ट से पहले आपने सुना था, वो था फिल्म लम्हे का। कलाकार थी श्रीदेवी और उसका फिल्मांकन हुआ था राजस्थान के सैंड ड्यून्स पर। हेमलता जी, आपका भी संदेश मिला है। तो कार्यक्रम के साथ आप लोग जुड़े हुए हैं, कार्यक्रम आपको अच्छा लग रहा है, आपकी राय और भी हमारे लिए मायने रखती है, इसलिए अपनी राय भेजते रहिए और मिलती हूँ आपसे इस अंतराल के बाद।
10: There's a reason some things just taste better. At Sharma's Kitchen, we don't cut corners. We don't add what doesn't belong. Just real milk. Traditional methods and products made the way they should be. From paneer to yogurt, ghee to khoya, every batch is crafted with care right here in Australia. You'll taste it, you'll trust it. Sharma's Kitchen. Yes, there is a difference.
11: जानिए SBS के टीवी और रेडियो चैनलों पर क्या चल रहा है और क्या आने वाला है। sbs.com.au/guide पर जाएं।
12: Like your music? We have got what you covered on SBS South Asian. There are shows like The Bollywood Session every morning and evening, 3 hours every day of just the hits from Bollywood. Need a party playlist? There's Desi Dance Party on Friday and Saturday nights. It's your weekend soundtrack. Enjoy Punjabi music. Don't miss Bhangra hits on weekend afternoons. Find your next favorite SBS South Asian show on the SBS Audio app, website or SBS On Demand.
11: एनआईटीवी पर जानें उन मुद्दों के बारे में जो एबोरिजिनल और टॉरस स्ट्रेट आइलैंडर लोगों के लिए मायने रखते हैं। देखें एनआईटीवी चैनल 34 और एसबीएस ऑन डिमांड पर।
13: एसबीएस किक ऑफ
14: द न्यू म्यूजिक स्टेशन सेलिब्रेटिंग फुटबॉल एंथम्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड।
13: इट्स लाइव नाउ
14: ऑन डीएबी रेडियो, द एसबीएस ऑडियो ऐप,
13: ऑनलाइन एंड एसबीएस ऑन डिमांड।
15: अपने पसंदीदा प्रोग्राम सुनने के लिए हमारी ऑडियो ऐप आज ही डाउनलोड करें। ये ऐप स्टोर और गूगल प्ले पर मुफ्त उपलब्ध है।
0: SBS पर आप सुन रहे हैं हिंदी कार्यक्रम और आपके साथ हूं मैं अनीता बरार। श्रोताओ, आपसे जानना चाह रही हूँ कि भारत की ऐसी कौन सी लोकप्रिय जगह हैं जो फिल्मों में अक्सर दिखाई दे जाती हैं या जिन्हें देखकर आपको बहुत अच्छा लगता है, और हो सकता है कि उन जगहों को देखकर उसके बारे में आप पता लगाना चाहते हों और फिर वहाँ जाने का भी सोच लेते हों, क्योंकि फिल्में तो यही काम करती हैं ना कि खूबसूरत नज़ारे दिखाते हैं और फिर हमारा दिल करता है कि उन जगहों पर जाया जाए और उन जगहों को देखा जाए। तो बस आप ऐसी जगहों के बारे में सोचिए कि आपने जो फिल्में देखी हैं उनमें कौन सी जगह ऐसी है जो आपको याद आ रही है। आपके संदेश मेरे पास आएंगे, ये मैं उम्मीद कर रही हूँ, 04397997667 पर। और आइए चलते हैं भारत के एक शहर की ओर जो जब तब हमारी फिल्मों में दिख जाता है।

इस गाने को सुनकर अगर आप पिंक सिटी के बारे में सोच रहे हैं तो बिल्कुल ठीक, क्योंकि हम बात कर रहे हैं जयपुर की ही। जयपुर जिसके भव्य महल किले बरसों से फिल्मकारों के लिए आकर्षण का केंद्र रहे हैं। सिर्फ भारतीय सिनेमा नहीं बल्कि हॉलीवुड भी इसके आकर्षण से अछूता नहीं रहा, वो भी बार बार भारत का रुख करते हैं, राजस्थान और जयपुर की ओर। द बेस्ट एग्जॉटिक मैरीगोल्ड होटल इसका उदाहरण तो है ही। इस फिल्म में जयपुर जोहारी बाजार में त्रिपोला बाजार की तस्वीर दिखती है। तो आइए आज कुछ बात करते हैं कुछ उन फिल्मों की जिसके लिए जयपुर की लोकेशन को रखा गया। शुद्ध देसी रोमांस, ये फिल्म काफी हद तक पूरी ही जयपुर में फिल्माई गई। जल महल, आमेर किला, हवा महल और जयपुर शहर का माहौल इस फिल्म में देखने को मिला। और याद है आपको फिल्म रंग दे बसंती का गाना मस्ती की पाठशाला।

ये गाना जयपुर के नाहरगढ़ किले पर फिल्माया गया। ये किला बना था 1734 में और इसे बनवाया था महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने। कहा जाता है कि 1857 के गदर के समय कई यूरोपियंस ने इस किले में शरण ली थी। अच्छा, फिल्म बोल बच्चन को भी जयपुर के चोमू महल में फिल्माया गया था और इसी महल में फिल्माई गई थी फिल्म भूल भुलैया भी। ये चोमू महल कोई 300 साल से भी अधिक पुराना है और जयपुर का आमेर किला ये तो शायद आप सबने देखा ही होगा। ये जयपुर की शान है और इसी महल में फिल्म वीर को फिल्माया गया था। तो आगे बढ़ने से पहले क्यों ना फिल्म वीर के एक गाने की झलक सुनते चलें।

और आपको क्या याद है गाना भोली भाली लड़की फिल्म सबसे बड़ा खिलाड़ी का? ये गाना फिल्माया गया था जयपुर के बिरला मंदिर में। इस मंदिर को लक्ष्मी नारायण मंदिर भी कहा जाता है और ये राजस्थान में मोती डुनगारी पहाड़ी पर बना हुआ है। सफ़ेद संगमरमर से बना ये मंदिर बनवाया गया था 1988 में। और जयपुर के प्रसिद्ध हवा महल में फिल्माया गया गाना कोयल सी तेरी बोली फिल्म बेटा, अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित।

अपने विशिष्ट डिजाइन, लाल सैंडस्टोन से बना ये हवा महल अपने आकार की वजह से अक्सर कृष्ण का मुकुट भी कहा जाता है। और याद करें श्याम बेनेगल की फिल्म जुबैदा, जिसे फिल्माया गया था जयपुर के नारायण निवास महल में। जनरल अमर सिंह द्वारा इसे बनवाया गया था 1928 में और अमर सिंह ने अपने पिता का नाम इसे दिया। अब आजकल नारायण पैलेस एक होटल में बदल गया है। पहेली और लम्हे में जयपुर और राजस्थान का अनोखा रूप दिखता ही है। और जयपुर शहर से कुछ दूर बाहर है आमेर किला, जहां पर फिल्म आई गई थी, फिल्म वीर, जिसकी बात हमने पहले की, और फिल्म जोधा अकबर। आमेर किला जयपुर का सबसे पुराना और सबसे लोकप्रिय किला है और इसे बनवाया गया था 1592 में। तो ये तो आप जान ही गए कि हमारी फिल्मों के लिए जयपुर और राजस्थान कितना लोकप्रिय है। और अब आइए सुनते चलते हैं फिल्म जोधा अकबर का ये मधुर सा गीत भी।

श्रोताओं, जानना चाहूंगी कि कैसे लगा आपको आज तक का, अब तक का कार्यक्रम? क्या ऐसा रंग लिए कुछ जगहों के बारे में आप आगे भी सुनना चाहेंगे, जिसमें उन जगहों की खूबसूरती की बात तो हो, यानी फिल्मों के गानों के साथ साथ आप उन जगहों का आनंद भी लेते चले और उसके इतिहास का पता भी चलता रहे? तो मुझे आप अवश्य बताइएगा कि आपकी राय क्या रहेगी। और हाँ, इस बीच हमारे श्रोता ब्रजेश जी को आज याद आई है बचपन की भी। कैसे? वो यूं कि मुंबई के गोरेगांव में था छोटा कश्मीर, जहां 80 और 90 के दशक में शूटिंग हुआ करती थी, है ना? क्या आपको पता था इसके बारे में? इसी तरह से कई ऐसी जगह हैं जो एक नए रंग को लेकर कर दी जाती हैं, जो असली में नहीं होती हैं, लेकिन हाँ, वहाँ सेट्स लगा दिए जाते हैं और उसकी शूटिंग वहाँ पर, लगता है कि हम उस जगह पर हैं जिस जगह की ये कहानी की बात हो रही है। अब चूंकि आज बात हम कर रहे थे जयपुर की, राजस्थान की, तो उसी प्रदेश में यानी राजस्थान की ही लोकेशन पर एक फिल्म बनी थी। अब उस फिल्म की बात तो मैंने की है जब मैं जयपुर की बात कर रही थी, तो याद कीजिए उस फिल्म का गाना, याद क्या कीजिए बल्कि सुनते चलिए।

श्रोताओं, हम सबके जीवन में यूं ही खनक बनी रहे, खुशियां बिखरी रहे, बस इसी कामना के साथ आपको इसी गाने के साथ छोड़े जा रही हूं। अगली मुलाकात तक के लिए आपको अनीता बरार का प्यार भरा नमस्कार।

0: आपको क्या लगा हम भूल गए?
1: हम दोनों हैं अलग अलग, हम दोनों हैं जुदा जुदा, एक दूसरे से कभी कभी रहते हैं हम खबा खबा।

कहां से देखता है, मैं गलत हूँ तू सही, देख मेरी नजरों से गलत में कुछ गलत नहीं, करना है जो करके ही रहूंगा मैंने तय किया, गलत को भी सही तरह से करने का निश्चय किया।

चल के रहता है ये वक्त का उसूल है। हर कतों पे कबूतर लग मेरी नजर रखेगा तू, करते करते पहरेदारी एक दिन थकेगा तू। मैं मगर नहीं थकूंगा, फैसला ये है किया गलत को भी सही तरह से।

लो, सांस के संग ले लो, अपनों के संग बराए के संग खासम खास की ले लो, इसकी फोटो उसकी फोटो एल्बम में तक देना, मेरी फोटो छुपा के सबसे लॉकर में रख देना, जो अगर किसी की नजर पड़ी फोटो पे तो सुन थप्पड़ मारो।

काटे काट मेरे दिल पे जुबान है, भेद दिल ये ऐसा कमाल है, सारा पूछूं आज किसका ख्याल है।

उसके इशारों पे मैं चला। जब वो चले संसार झुके, जब वो मुड़े तरनी बहे, जब हाथ उठाए आंधी रुके, जब पल के झुकाए तो वक्त रुके। डरता करता फिर भी है मेरा मन, नाम सुन के बढ़ जाए धड़कन, मिट्टी पे पड़ जाओ उसके कदम, करते सक जमीन

0: SBS South Asian. Your news from here and hits from home.
1: अरे भाई, मन्ने एक बात बता। थाम पंजाबी लोग दारू कित कित पियो रे भाई।

या कुछ ऐसा कि मैं बाकी सब लड़कियों के बारे में सोचना छोड़ रहा हूँ। माना कि थोड़ा बिजी हूँ, तेरी मेरी शादी के लिए मैं पैसे जोड़ रहा हूँ। कब से करूँ तुझको मैं चेस बेबी, दिल में मुझे दे दे थोड़ी स्पेस बेबी, ना मुझ पे कोई मीटू वाला केस बेबी, शरीफ हूँ।

0: South Asian.
1: Listen on DAB Radio,
2: smart speakers, or the SBS audio app.
3: बड़े कमबख्त हो आप, नमाज के वक्त पे याद आते हो. बड़े कमबख्त हो आप, नमाज के वक्त पे याद आते हो. अगर आपको ये लगा तो बिल्कुल गलत लगा.

जब प्यार था तब बात और थी, अब तो आप व्यापार कर रहे हैं, तभी तो जाते वक्त नुकसान नफा बोल दिया था। आप कभी अपनी कमियां ही नहीं बोले, वरना खुदा के सामने कबूल है तो तीन दफा बोल दिया था, तीन दफा बोल दिया था। जैसे हमें कोई नहीं मिला, आपको भी सभी नहीं मिलेंगे। खुदा हाफिज़ औजला जी, आज के बाद कभी नहीं मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे।

बहुत गौर से सुनिए, आज जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये एक अतरंगी भूत की कहानी, कभी नहीं सुनोगे आप ऐसे कहानी। नानी के पीछे पड़ी है ये भूत, उसके बिस्तर पे सो।